साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हु जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम।

जाए। प्रभाती महला पहला तेरा नाम रखन कर्म चानन सुरत तिथे लोए। अंधेरे अंधी वापरे सगल लीजे खोए। एहो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार। रहाओ पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करोड़।

जित मुख तू सलाही है, तित मुख कैसी भूख, नानक मूर्ख एक तू अवर भला सै सार, जित तन नाम ना उपजै से तन होहे खुआर। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे, संकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध भये उदासी, देवी मर्म ना पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए, तरिय साचा होई,

जल जाए। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए। गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह।

जाकी वास बनासपत सौरै तास चरण निव रही है। गुरमुख जी प्राण उपज है गुरमुख सेव कर जाई है। गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है। प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है। पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

जैसे हरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है, तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर परगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी।

कर मानिया नानक गिरी उदासी सो परवान प्रभाती महला पहला दिष्ट बिकारी बंधन बंद है हौ तिस कै बल जाई पाप पुन की सार ना जाने भूला फिरे अजाई बोलो सच नाम कर।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वक

देख संभाले सुख दुख पुरब कमाई कर्महीन सच भीख्या मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करूं मूर्ख जग कहिया।

जाने, जिसनो नजर करे सोई बिद जाने, मैं लो उजल सच सोए, उत्तम आख ना उचा होए, मनमुख खूल महा बिख खाई।

जर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

साच रहै लिवलाई हर हर नाम जपहु जन पाई गुर प्रसाद मन अस्थिर हुवै अन दिन हर रस रहिया आगाही रहाऊ अन दिन भगत करहु दिन राती इस जुग का लाहा पहाई।

राम कट कट पूर रहया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाउ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग कट कट हर भरपूर रहया नाम रतन तिन्ना हृदय प्रगटिया जो गुर सरनाई भज पया इंद्री पंच पंचे वासियाण खिमा संतोख गुरमत पावै सो धन धन हर जन वड पूरा जो भै बैराग हर गुण गावै गुरते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरै कर आचार बो संपो संचै जो किछ करै सो नरक परै एको शब्द एको प्रभु वरतै सब एकसते उत्पत चलै नानक गुरमुख मेल मलाए गुरमुख हर हर जाए रलै प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सहलाए पूरा भाग हुवै मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाउ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई बिरला ले जिसनो अपनी नदर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदर हो जाए आपे साचा लए मलाए गुर की बाणी स्यो लाए प्यार एथै उथै हो आधार आपे देवै सिरजनहार सच्चा मनाए अपना पाणा सोई भगत सुगड़ सुजाना नानक तिस कै सद कुरबाणा प्रभाती महला चौथा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावह गुरमत लिव

हृदय अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइय प्रभ अपना, मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई, गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा, उगवै सूर गुरमुख हर बोलह, सब रैन संभालह हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल, हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झारह हम बाल रहाओ, साकत को दिन रैन अंधारी। मोहे फाथे माया जाल, खिन पाल हर प्रभ हृदय ना वस्यो। रिन बांधे बहु विद बाल, सत संगत मिल मत बुद्ध पाई। हौ छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना। गुर किए शब्द निहाल, हम बारिक गुर अगम गुसाई। गुर कर कृपा प्रतपाल, बिख पौ जल डुब दे काढ ले हो प्रभ। गुर नानक बाल गोपाल, प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रस कर सीक। गावत सुनत दो पय मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक। गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ। जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिन्ना मस्तक उजल टीक। हर जन सोभा सब जग ऊपर, जो विच उडवा सस कीक। जिन हर हृदय

जप मन हर हर नाम निदान हर दरगाह पावह मान जिन जपया ते पार प्राण रहाउ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ

रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन मह हैरान सो सुखिया सब ते उत्तम होए जां कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवे ना जाए अन दिन प्रभ के

नानक उदर है जन की सेवा, प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे, समत देव।

सगल त्याग नाम हर जीदा इस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया जिस प्रसाद मोह नहीं माया हलत पलत जिन गुरह सवारिया।

बल जाई अगमी अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइए लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु ते आई है आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान

होई सदा सदा प्रभ जी कै संग उतरी मैल नाम कै रंग चरण कमल सिंह लागो प्यार बिनसे काम क्रोध अहंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत।

गुरपूरा पाइय वड भागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवा गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा।

संत संगत मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे, प्रभाती महला पंज।

क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग रैन दिन सत्याए हर हर तजहु मन के परम साध संगत हर मिलै।

झूठै लालच जन्म गवाया, लपट रही फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरै ना माया मरै, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरै, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चलै प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

मन वसाई विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाने क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाई कीर्तना चले चलाया गणकना गणी हुक्म पछाण बोली भाए सुपाई जो किछ वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगध आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान ना जाई जियो अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत

ना पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, तिप्त नहीं बिन सतगुर पाई। सहज सहज मिले सुख पाई है दरगाह।

खुन त्रै मिल जगती उपाया, ऐसा बल चल तिनको दिया, हुक्मी ठाक रहाया, ऐसी जन विरले जागे अंदर।

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

जन निर्मल हर कै नाम समाई हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार हर मंदिर में मन लोहट है मोहया दूजै पाई पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई हर मंदिर में हर वसै सर्ब निरंतर सोई नानक गुरमुख वणजीऐ सच्चा सौदा होई प्रभाती महला तीजा तै पाए जागे से जन जागरण करह हउ मैं मैल उतार सदा जागह कर अपना राखह पंच तस्कर काढ़ह मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आई जित मार्ग हर पाई मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाय हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाय गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार हो मैं विच जागरण ना हो वई हर

हुए भाग ता दर्शन पाइए आप तरह सब कुटुंब तराइए रहाउ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिक सब काटे धर्म राय के कागर फाटे साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माहि समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण सरनाया रहाउ चूका गौण मिटिया अंधियार गुर दिखलाया मुक्त।

निदाना कहा उड़ीसे मजन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना भूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सरब ठाई रहाओ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

तेरे मन का भरम ना जाई रहा। पकर जियो आनिया देह विनाशी, माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुंह तोहया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिन में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया, तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया, प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत याद समाई, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाडा ब्रह्मा निगम बीचारे, अलख ना लखिया जाई रहाओ, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा, पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

हुक्म है आपे निरपहु समत बीचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बेडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच सुमायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म लुकाया।

भगत परवेशं पगनाच सचेत अकर्मं एलं पट नाच धर्मं मृग्यासन तुलसी माला कारुजल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रेलंपट कृष्ण अपाखं।

पर करतमान बारू की भीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिनस जय है तेरो गात। छिन

बिखियन सियो अत लुभान, मत नाहिन फेरी रहाउ। मानस को जन्म लीन, सिमरन नह निमुख कीन। दारा सुख पयो दीन, पगहों परी बेरी। नानक जन

सहस कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलं तस्य जन्म से जावद ब्रह्म न बिंदते सागरं संसार से गुर प्रसादी तरह के करण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वास है जिन काल रखी तार जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रि शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं।

मन माध वह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं रचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडले विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरन संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मं ता मरणं हर

वर्तंत बनासन गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिंग नानक भगवंत भजनासन किरपंत हरियं मत तत् ज्ञान बख्शी देह बुधा कुशल थान बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदय दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्म

परवित माया संबंधन है। दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्ब जी प्रतपाल कह। अनित्य है वितंग, अनित्य है चितंग,

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धिहं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीप्य बैसवांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधनं ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वज्जन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पस्मं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निरतन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं ना लभ्यते अतरंग तरंग तारन है निरतनंग तन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय घट घट बसंत वास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रत्न जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पूचन्ते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते वृत्ता अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है।

संत ना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गुप्त।

करह मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मतः ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन।

जीहि पणिज्यो उत्तम सलोक उदरण नैन नंदनी गुरमंत्रहीन जो प्राणी तिरगंत जन्म भ्रष्ट है कुकर है सुकर है गर्द बह काक है सर्पन है तुल खल है चरनार बिंद भजन हृदय नाम धारण है कीर्तन साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूत नह नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राज नह नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता बिलास है नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग

प्रभं जात कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक कह सर्वत्र रमणं गोविंद है नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजन है दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममंग कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बावन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत भावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख नानक नाम साध सुवजन है अजापो गंत कांड मूलं।

कलं छिद्रं कोट विघ्नं अपराधं किलबिखमलं परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापतं मृत्यु जन्म परमंत नरक है अनक अपावंगना सिद्ध्यति निर्मलं साध संग है जपंत नानक गोपाल नामं रमंत गुण गोविंद नित प्रत है तरन सरन स्वामी रमन सील परमेश्वर है करन कारण समर्थ है दान देत प्रभु पूर्ण है निराश आस करन सगल अर्थ आलिय गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भव है पै अत्मियं महानगर बासं धर्म लखियण प्रभमय साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं हे अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है एकामं नरक विश्रामं बहुजोनी परमावन है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है तब पै विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अधमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाद्यं।

त्रिडंत अनक माया बस्तीर्ण है। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है। ब्रह्म प्रयान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है। वैद्यम पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

उत्तर है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वच्छल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अच्युत है। जेन कला धारियो अकाशं, बैसंतरं काष्ट बेष्टं। जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं। जेन कला मात गर्भ प्रतपालं, नह सिदंत जठर रो।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है, लब्धिहं संत संगीन, नानक श्वास मार्ग हर भगतन है, मस्कं पगनंत सैलं, कर्दमं तरंत पपील कह, सागरं लगंत पिंगं, तम प्रकाश अंध कह, साध संगीन सिमरंत गोविंद, शरण नानक हर हर हरि, तिलकहीनंग जथा बिपरा, अमरहीनंग जथा रा।

आस्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच अपार्ग बिंद है बसंत साधरिध्यं अच्युत बुजंत नानक बड़भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्यान खर है विखम स्थान मन मोह मदनं महा असाद पंच तस्कर है हीत मोह पै परम भ्रमणं अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है पाज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलहं रोग खंडन है।

निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः आचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटांब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियु शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इत है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वंग तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरंग सहकंगता हरियंग बूडंगता तरियंग ऊणंगता परियंग अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरण ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरण बहु विघ्न करण उच्चरण सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म कर

कर्पूर पोप सुगंधा परस मनुख्य देहं मलीनं मज्झा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञान।

गोविंद रमण साध संग मह सुमंत्र साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लब्ध अंग बड़ भागण है हर लब्धो मित्र सुमितो

नानक हर पूर्व लिखण है दसन बिहून पयंगं मंत्रं गारडी निवारं ब्याद उपाड़न संतं नानक लब्ध कर्मण है जात काथ रमणं सरणं सर्वत्र जियण है तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणार बिंद मन भिद्यं सिद्धं सर्व कुशलन है गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरण है संसार सागरं नानक पुनरप जन्म ना लभ्यते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उदारं बड़भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण है लब्धं साध संगेन नानक बड़भागी भेटंत दर्शन है सर्व दोख प्रंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतरण है लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियण है होयो है होवंतो हरण भरण संपूर्ण है।

खावती उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूप पावती उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे तिस बनिया हब शिंगार साई सुहागणे हौं सुती होए अचिंत मन आस पुराइया हर हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया आसा इती आस के आस पुराइया सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत

सच तना सुपना उभी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औखद आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरे।

प्रेम की दम के हो होती साट रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांदे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हिरत संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल।

आहे। नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहु जाहे। लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बेहाल। नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार। मूसन मगन मरम सिंह खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम सिंह सूद ना सिमरत अंग। प्रगट भयो सब

पवन च बोलन हार संतोह माखन खाया शास पिया संसार कबीर माया डोलनी पवन वह हे अवतार।

कहजार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी उप

अजो सो नाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यो कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट।

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बनज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाए कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

शरीर थोड़े जल माछुली चीवर मेले ओ जाल ए टोगने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते भलो।

ऐसनों की कुकर भली साकत की बुरी माए ओ नित सुन हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए कबीर हर

होर काया हांडी काठ की ना उह चढ़ बोहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदोरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसिया गुण को मरिया रोए, अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय। कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत है अपनो अदमाज लीजे।

कबीर रमैया कंठ में चूकह सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय, पांचों लड़के मार के।

जिन हर का नाम ना चेतेओ, बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास नरक पर है ते मानई।

किए राखे तलै दुराए प्रगट भये निदान सब जब पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटुंब धंधा करता रह गया पाई रहया ना बंद कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए सरपन होए कै औतरे जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के होई राखे नार गद ही होए कै औतरे पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर

आए जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाई है

रहो हर खगुन गाय। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचर है कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जो निस बिसर आए मिले परबात, जो नर बिसरे राम स्यों ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संख मचूर, देवल देवल ताहड़ी।

ता क्या करह उठ के ना जपह मरार। एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड़ पसार। कबीर सूता।

होएगा। जो सिर पर आवे काल, कबीर ऐसा जन तिक देखिया, जैसी तोई लाख, दिसै चंचल बहुगुना, मत ही नाना।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कंठ रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा धाम कबीर साकत ते सूकर भला राख आछा गांव ओ साकत बपरा मर गया।

बार बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का ताजमान का अपमान ऐसा कोई दास हुए

ऊच पवन कन कामनी शिखर तजा पहराय ताते भली मधु करी संत संग गुण गाय कबीर पाटन ते उजर भला राम।

का बापुरा पूजह नारतन करोड़ कबीरा एक चंपो देखियो हीरा हाट बकाय बनजन हारे बाहरा कौडी बदले जाय कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया शब्द जो बाहया एक लागत ही भुए मिल गया पढ़िया कलेजे शेक कबीर साचा सतगुर क्या करे

दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जेह मार्ग पंडित गए, पाचे परी बहीर, एक अवघट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ, चालत कुल की कान, तब कुल किसका।

मल्यागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान, जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान। कबीर सारी सिर जनहार की जानै नाही कोई, कै जानै आपन तनी कै दास दीवानी होए। कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल, उरा गर पान।

के बिन मिले पलट पई सब खे जह अनपो तह पै नहीं जह पो तह हर नाही कहियो कबीर बचार कह संत।

हलाल। दफ्तर लेखा मांगिया तब हुई गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खीचरी जा मह अमृत लोन। हीरा रोटी कार ने गला कता वह कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप। हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप। कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार। सोई राम सबै कह सोई कौतक हार। कबीर रामे राम कहो कहबे माहे बबेक। एक अनेक कह मिल गया।

एक आर्य मरहत सारखे पूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इयो मानी होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मलाए, अनक सियाने पच गए ना निरवारी जाए। कबीर

मारह जोर कर, कहते हैं जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है, होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जो बाब खदाए,

होए। उस साचे देबान मह पल्ला ना पकरे कोय। कबीर धरती अर आकाश मह दोए तू बरी आवद। हट दर्शन संसे परे हर चौरासी सिद्ध। कबीर मेरा मुझ मह किछ नहीं।

दास कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोले जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परापूर्व ली पावनी प्रगट होई आए कबीर टालह टोलै दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना ब्यापई

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे सी पोषाय ले राम ना लावो चीत।

कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कार्ज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाही है।

तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साद है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत पंखी चले दसावरी, बिरखा सुफल फलंत कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखया हुए ललाट मुक्त पदार्थ पाइए, ठाक ना अवकट घाट कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं ते आद भगतन सेती गोसटे।

बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पचमुआ, चारो बेदो माही। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग। बैरागी बंधन करह ता को बड़ो अपाग। सलोक शेख फरीद के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ है धनवरी।

मा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो मांझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद रीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहनगे दुख रुखी सुखी खाए कै।

नाती तोती संभही सुती आए निचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वान दुख बिरह बिछावन लीप एहो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजे सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहू के रहे कम। फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल, एहो न दोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए मार।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दै दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे परांद दरवेसा नू लोड़ी है रुखा दी जीरांद फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वीस गुनही।

वत कुवारी ना थी कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवह उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

आस फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरीसता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी।

पंजे वक्त मसीत उठ परिदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवै

तै पासों वे लद गए तू अजय ना पतीणो हे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संधि पाही। महला पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनों आखिए जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपिया

चल गई फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए।

फरीदा हो बलिहारी तिन पंखियां जंगल जिन्ना वास कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास फरीदा रुत फिरी वण कंबिया पत झड़े झड़ पाहे चारे कुंडा ढूंढियां रहण कथाऊ नाही फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरे जिन्नी वेसी सौ मिले से ही वेस करे महला तीजा काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे महला पंजवा फरीदा गर्भ जिन्ना वड्याईया धन जोबन आगाह खाली चले धनी सिओ तिब्बे ज्यो मेहा फरीदा तिन्ना मुख डरावनी जिन्ना वसारियों नाऊ ऐते दुख कनेरिया अगे ठौर ना खां फरीदा पिछड़ रात ना जाग्यो जे बंदड़ो मोयो जे ता रब वसारिया ता रब ना विसरियो महला पंजवा फरीदा कंत रंगावला वड्डा वे मोहताज अल्लाह से तीरत्या इहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख एक कर दिल ते लाहे विकार अल्लाह पावे।

यो ना वजदा जिस अल्लाह करदा सार महला पंजवा फरीदा दिल रता इस दुनी स्यो दुनी ना कितै कम मिसल फकीरा गाखड़ी सो पाईऐ पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पछा रात जो जागन लहन से साई कन्नो दात दाती साहिब संधियां क्या चले तिस नाल एक जागन दे ना लहन एक ना सुतियां दे उठाल टूडें दिए सुहाग को तौ तन काई कोर जिन्ना नाउ सुहागनी इन्ना चाक ना होर सबर मन कमान ए सबर का नीहणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन एवै जानेन होण नजी को खुदाई दे भेत ना किसै देन सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दिड़ कर है वध थी वह दरियाओ टुटना थी वह वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किन्ने चालिया दरवे सावी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुँह प्री मिलन तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हौ टुनेंदी सजना सजन मैंडे नाल नानक लख ना लखिया गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाऊ डुब मुए बग बप्पड़े सिर

आप ही तारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखाने हां की बल बल बल बल सत बलिहार सर्व गुण निधानं

कै सूत है जहानं कवन उपमा देउ बड़े ते बडानं जानै कौन तेरो पियो अलख अपार देउ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दार।

अकार अकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होहि कृपाल सो जन प्रभ तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिय।

पव जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्स मन चाऊ भगत इहो मन ठहरावे, बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगत सगल हर पवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

मद माता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हर्तानी।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नाग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दू कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख उल्टत जात बिरख की शारुह दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरुह अगम अपारुह श्री पतनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारुह प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई।

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर।

सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परियो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परियो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरियो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसियो जम दूतन दन मृत मरियो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरियो है प्रेम भगत उदर है से नानक कर कृपा संत आप करियो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सका हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्स मग पावक जरियो ना जात रहियो जन तूर लग नीर ना साकस बोर चल है हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांति विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत।

दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल

हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सदादिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावै जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल

खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जिहवा रस आद अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निरवैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माणियो सत जुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल।

नित्यन भगत बेन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने सुख देव प्रीख्यत गुण रवे गौतम रिख जस गायु कब कल सुजस नानक गुर नित नवतन जग छायु गुण गाव है पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो गुण गावे नवनाथ धन गुर साच समायु मां धाता गुण रवे जेन चक्रवे कहायु गुण गावे बल राऊ।

सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थु सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथु ता धरियो मस्तक हथ सहज अमियो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहे आगाज मारियो कंटक काल गर्ज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ली समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रत उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परसमरार जा की दृष्ट अमृत धार काल पखन उतार तिमर अज्ञान जाहि दर्श द्वार वे जो सेवह शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर भाव उतार किए निरपार सत

रिद बेगास जाग्यो अलख कल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारद हरन पिखन पेह कलमल प्रसन सद रंग सहज कल उचरै जस जंपो नहणी रसन नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद।

नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालक धोवै सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

सारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जीन सर्व सिद्धि काव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन।

है पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अम्बरीक भवजन तरिया।

गुर कौ फुरिया एत नाम लागते तीस त्याव है जति तपीसर मन वसिया सोई नाम सिमर गंगे पतामह चरण चित अमृत रसिया इत नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया नाम कित संसार किरन रव सुरतर साख है उत्तर दक्षण पूब देश पश्चिम जस भाख है जन्म ता एहो सकियत जित नाम हर हृदय निवास है सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशास है भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत भवजन हरन गुरु अमरदास तै पायो नाम त्यावह देव ततीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारी जह नाम समाधि।

अमर गुर तुस दियो करतार। सत सूरो सीर बलवंत सत पहाए, संगत सघन गुरु मत निर्वैर लीना। जिस धीरज तुर धवल तुजा।

मुखहु भगत उच्चरे अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परसे हो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रै हाथ ता पर सके अत हाथ लगे है गुर अमर पै जी ता पर सके अत जी गुर अमर पणिजै नैन ता पर सके अत नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सके अत श्रवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो सिर

ज्ञानी सुपन एक प्रतख एक एक समहलीन तीस एक अर पांच सिद्ध पैंतीस नाखीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरण्यू गुरु अमरदास।

जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुक मांगद करतूत राम जंप हो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजे सो मत जल जानी जुगत गुरे अमरदास।

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुरु अमरदास परसीय अपौ लभै गौ चुकह। एक बिन दुग

सो दृढ़ नानक संग रहेउ ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहेउ तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो बोहिथो विधाता निर्मयो सब संगत कुल अधरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन आप नारायण कला तार जग मह परवरियु निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहने संग हो गुरे अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार नानक कुल निम्मल अवतरियु गुण करतार उचरै गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरि।

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करूं साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुर अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म

पाद सलाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत

इव जुद्ध कार कन हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गणंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पाल।

निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जनह की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अविनाशी अवगत ते आयो।

को फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमै अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह मन मज्जन।

कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सर अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे अमै रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुरत दूर अंतर नासे सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटे संजम सत संतोख सील सनाहुम फुटे सतगुर प्रमाण बिदने सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरे तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरी।

कै सतगुर शब्द अथाह हमें तारा रस गुटे मत माता संतोख पिता सर सहज समायु अजूनी संभवयो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भय सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै तै शब्द निशान बुझायो सेज सदा सहज सोवान संतोख सराचो सदा सील सनाह सो है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल

गुर पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणे अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे इहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवे।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द हृद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान।

ज्ञान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो है जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

कार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्या

बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कमन उपमा देऊ कमन सेवा सरेऊ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुल मन बच क्रम जान अनत

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रि भवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण माणिक करै ज्ञान गुर कहियो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सत्य है कार जो गुरु गुरु अहनस जपै दास

यो ते अक्यात संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत त्या

तेरे जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो कुत्ती जो प्यास पियूस पिवन की वंचत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पढ़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए

शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओहो हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओहो बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओहो ज्यों ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्वाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभात है कर है स्नान स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा।

यो देख रूप अत अनूप मोह महामग पहे किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आ

धर्म धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भीख धरियो हर नाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लख कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

मुकट शीस मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर तर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आद

दमन सकल पवन कुशल कर्ण सर्व भूत आप ही दिवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म माच

गुरु सम्राथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित।

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा परपूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बद

दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहू का को पावे आत्म परगास कहो वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गह नात जात कबलास कौ।

तरियो गुर हाथ तीन भवन भरपूर रहे ओ सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी अचल अजूनी संभव पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समर्थ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जो गणं अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर भणं तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनं बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणं कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जेह सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर

प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पार

लोभ अपमान स्यो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर बंध्यो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

अपार सारयो सुपार परायो गुर गम प्रमाण अजर जरियो सार संतोख समायो गुर अर्जन कल उचरै तै सहज जोग निज पायो अमयो रसना बदन बरदात अलख अपार गुर सूर शब्द हौ मैं निवारियो पंचाहर निदलियो सुन सहज निज घर सहारियो हर नाम लाग जग उधरियो सतगुर हृदय बसायो गुर अर्जन कल उचरै तै जन कह कल सुदी पायो सोरठे गुर अर्जन पुरख प्रमाण पार्थो चालै नाही नीजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो।

नाम लाग जग उदरेहु जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठ पायो अब नाही अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी जो

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुन्दर मैं बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। कल समुन्दर भय रूप, प्रगट हर नाम उदारन, बस है संत जिस हृदय, दुख दारिद्र निवारण, निर्मल भेख अपार, तास बिन अवर ना कोई, मन

हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नहावे नित पुराण बाचिय है वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय।

शिव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैन अपार पहला वस

पुछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाहीं पौ नानक।

नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अग्न मरे जल लोड़ लहो विण गुर निद जल नाही जन्म मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद

निर्मल नावन नानका गुर तीरथ दरियाऊ जन्मे का फल क्या गणी जहां हर भगत ना पाऊ पैंदा खादा बाद है जहां मन दूजा पाऊ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा।

जो लेवे सो देवे नाही, खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे, काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां, जै सेती मेरा संग जित डिठै तन पर फुड़ै चढ़ै चवगण वन। रज ना कोई जीवया पहुंच ना चलिया कोई, ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए, सरफै सरफै सदा सदा एवै गई विहाय, नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही लै जाए, दोष ना दे राए नो मत चलै जा बुढ़ा होवै, गल्लां करे कनेरियां ता अन्ने पवना खाती तोवै, पूरे का किया सब किश पूरा घट वध किश नाही, नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही।

ठग मनमुख बन चलाई है, ना मिल ही वग सग आप भुलाए भुलिया आपे मेल मलाए। नानक गुरमुख छुटिया जे चले सतगुर भाई, साला ही सालाहना पी सच्चा सालाही।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है अत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ वे परवाह है कित खादै तिपताए सतगुर कै पाण जो चलै तिपतासै हर गुण गाए तन तन कल युग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उर धार तिग तिन्ना का जीविया कित आए संसार गुरमती पहु मन पवै ता हर रस लगै प्यार नाओ मिलै तुर लिखिया

मनमुख अंदाल हुए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागे सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल।

अंदोले इसमें अग्नि का वास, वाणी सुरत न बुझनी, शब्द न करह परगास, उन्हा अपनी अंदर शुद्ध नहीं, गुर बचन न करह विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की राखदा, हौ सद बलिहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे, जन नानक ता का दास, माया पोयंगम सर्प है, जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है, गुरगरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्म

दूत ज्यो पिता नाम तिस जाय हर हर नाम ना चेतनी करतै आप खुआय हर गुरमुख कृपा धारियन जन बिछड़े आप मलाय जन नानक।

नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताहे, चिंता तावत रह गए, ता मन भया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है, सा तन सुती।

जिन को पूर्व लिखिया तिन्ना भेटिया गुरु गोविंद नानक सहजे मिल रही हर पाया परमानंद सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार सतगुर

जन सिज्जै बिन शब्दै मुक्त ना होई। भेख करह बहु कर्म बगुत्ते पाए दूजै परज विगोई। नानक बिन सतगुर नाउ ना पाईऐ जे सौ लोचै कोई। हर का नाउ अत वड ऊंचा ऊंची हूं ऊंचा होई। अपड़ कोई ना सकै जे सौ लोचै कोई। मुख संयम हच्छा ना होवे कर भेख भवै सब कोई। गुर की पौड़ी जाए चढ़ै कर्म प्राप्त होई। अंतर आए वसै गुर शब्द विचारै कोई। नानक शब्द मरै मन मानिए साचे साची सोई। माया मोह दुख सागर है बिख दुख।

आई। नानक करता सब किस जानदा, जिन रखी बणत बनाई। होम जग सब तीर्था, पढ़ पंडित थके पुराण। बिख माया मोह ना मिटई, विच हूं मैं आवन जान। सतगुर मिले मल उत्तरी, हर जपया।

बहु चित्तवदी बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी मर बिन सजाई खिनवार।

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट कम।

करां उपर हर चेतिया से पाइन मोख द्वार नानक आप ओहे उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस त्रापे हर दरगह गुर शब्द सिंघापे बिन शब्द

हर जग जीवन उर धार नानक गुरमुख सोहणे तित सच्चै दरबार हर मंदर हर साजिया

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हौ मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

तन मन सुख होए जा तत बूंद मोहे पाए। अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए। अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए। आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए। हर गुण गाव हुकामणी सच्चै शब्द समाए। भय का सहज श्रृंगार करहु सच।

पास सतगुर मिले है जल पाई है चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसके पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचे अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाय हर गुठा मन तन सब परफड़ सब जग हरियावल होय शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होय नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोय नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोय हर उठे मन तन परफड़े सब जग हरिया होय बडड़े चाल चाल चलंबले

बोलना बुझ ना सका कार वण तिण त्रे पवन तुझै त्याएदा अन दिन सदा विहान बिन सतगुर किनै ना।

जोग पाइए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे पवह वेद पढ़ह जोग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुर

नानक सतगुर वाह वाह जिसके नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूरन पर

आया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाइए आन दिन रह आनंद नानक सहज समाइए।

सद उजले इत सच्चै दरबार तिन बहंदियां उठदियां कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले ना विछड़ै जे मेले सिरजनहार गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुख सार नदर करे जिसे अपनी तिस लाए हेत प्यार सतगुर की सेवै लगिया भौजल तरै संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुर मिलै प्रभ पाईऐ सब दुख निवारण हार मनमुख सेवा जो करे दूजै पाए चित लाए पुत कलत कुटंब है माया मोह वधाए।

हुक्म अरादि हुक्मी समय समाय हुक्म वर्त नियम सोच संयम मन चिंदिया पल पाय सदा सुहागण

जाए। मानमुख हुकुम ना बुझे बपड़ी, नित हूं मैं कर्म कमाए। वर्त नेम सुच संयम पूजा, पाखंड भरम ना जाए। अंतरोहक शुद्ध माया मोहे बेदे, ज्यों हस्ती शार उड़ाए। जिन उपाय तिसै ना चेत है, बिन चेते क्यों सुख पाए। नानक परपंच किया तुर करता, पूर्व लिखिया कमाए। गुरमक प्रतीत पई मन मानिया, अन दिन सेवा करत समाए।

कूड करै आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संजम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावै सो थाए ना पवै दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसया मन आए राग

पार लंघाए, गुरसिखा की हर धूड़ देह, हम पापी पी गत पाहे, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुर नानक मिलिया आए, जम कंकर मार बधारियन,

रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन अनंत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

लागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार दूजी छोड़ कवाटड़ी इकस सौ चित लाए दूजै पावी नानका वहन लड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रिया

जिस पास बहते आंसू ही है सबना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन। बिखियन स्यों काहे रचियो निमुख न होए उदास। कहो नानक भज हर मना परै ना जम की पास। तरन आपो इउं ही गयो लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं

कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। हर जन हर

भई चितवत रहे उठ गौर, नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोए कहो नानक सुनरे मना हर पावे सो होए।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख

ते सूचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगह जोध अपा।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कम सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल कर कर एहो पव।

मद देख भूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पौन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खेलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोतिए अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाइए सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजिया गुरपूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सज सौदा जिस।

कमाई गुर निंदा पते पचान परमे पूला दुख कणो जम मार करे खुलहान मनमुख सुख न पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथे तंद पटाई है सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा

कोते ना पवे तिन हर गुर दर्श न होए खोटे जात ना पत गए खोड़ ना सीज सकोए खोटे खोड़ कमावना आए गया पद खोए नानक मन समझाई है गुर के शब्द सालाहा राम नाम रंग रतिया पार ना परम तिनाहा हर जप लहा अगला निरपो हर मन मा।

रस्ते से निर्मल हौ सदबरेहारे जास, हृदय जिन के हर वस तेत कट है परगास, मन मेरे हर हर निर्मल त्याय, तुर मस्तक जिन को लिखया से गुरमुख रहे लिवलाय, रहाओ हर संतो देखो नदर कर, निकट बसे भरपूर, गुरमत जिनी पछाणया से देख सदा हदूर, जेन गुण तेन सद मन वस अवगुणवंत्या दूर, मनमुख गुण ते बारे बिन नावे मरदे चूर, जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्याया हर सोए, अन दिन भगती रतया मन तन निर्मल होए, कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए, जिस अंदर नाम परगास है ओ सदा।

पहला हाथ न आवई, अंत गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हरसे ती लेवलाए, देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ न पाए, जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है, सेव पई तनताए, हर गुण गावे हर निद पड़े, हर गुण गाए सुमाए, नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जे नाम रहे लेवलाए। श्री राग महला तीजा, जिन्नी एक मन नाम ते आया, गुरमति विचार, तिनके मुख सद उजले, तेत सच्चे दरबार, वे अमृत पीवे।

इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम त्याए, हरहाओ हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना हो वई, दुबदा बोर खुआर, सोजन रलाया ना रले, इस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राखे उरतार, मन तन सौंपे आगे तरे, होमे विचो मार, तन गुरमुख सो प्रवान है, जे कदे न आवे हार, कर्म मिले ता पाई है, विन कर्म में पाया ना जाए, लख चौरासी तरस दे, जिस मिले सो मिले हर आए, नानक गुरमुख हर पाया, सदा हर नाम समाए, श्री राग महला तीजा, सुख सागर हर नाम है, गुरमुख पाया जाए, अंदर नाम त्याई है, सहजे नाम सुमाए, अंदर रचे हर सच स्यों, रसना हर गुण गाए, भाई रे जग दुहिया दूजे पाए, गुरसरनाई सुख लहे, अनगिन नाम त्याए, अरहाओ साचे मैल ना लग गई, मन निर्मल हर त्याए, गुरमुख शब्द पछाणिए, हर अमृत नाम समाए, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, अज्ञान अंधेरा जाए, मन मुख मैले मल परे, होमे तृष्णा विकार, बिन शब्दे मैल ना उतरे, मर जम्मे हुए खुवार, तातर बाजी पलच रहे, ना उरवार ना पार, गुरमुख जब तब संजमी, हर के नाम प्यार, गुरमुख सदा त्याई है।

दे, नित जोहे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी, बहु चिंता पिर जाले, सबना का दाता एक है, आपे बख्श करे, कहना किशु ना जावई।

क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए, एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए, मन मेरे अनदिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले ऊंज पड़ेगी खेत, हरहाओ मन की इच्छा पूरियां शब्द रहा भरपूर, पए पाए भगत करे दिन राती हरजू वेखे सदा हदूर, सच्चे शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी धीर, जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए, सच्चा शब्द ना पछाण्यो सुपना गया विहाय, सुन्ये कर का पौना ज्यो आया त्यों जाए, मानमुख जन्म बिरता गया क्या मोदे सी जाए, सब कुछ आपे आप है होमे विच कहन ना जाए, गुर के शब्द पछाणिए दुख होमे विचों गवाए, सतगुर से मन अपना हों तिनके लागो पाए, नानक दर सच्चे सच्यार है।

गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग अरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता हो प्रमणो ना विसर जिन सब केश

हलत पलत मुख उजले सचे के गुणसार आड़ पैर गुणसार दे रते रंगे पार पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जे मिले पाईगे शब्द निधान कर कृपा प्रभे अपनी जपगे अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान।

संग सुमाओ हर जप के आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे तर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग मोहल्ला पंजवां प्रीत लगी तेस सच स्यो मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहया सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत

दया प्रव्यापनी एक निमख ना मनो विसार रहाओ। गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कटन हार, बिन घर नाम ना सुख होए।

संता संगत मानस प्रीतम भगत सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन।

बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते होए विनाश हरहाओ। साहिब मेरा निर्मल इस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए, इस आगे अरदास कर जो मिले करतार। तल गुरदाता नाम का पूरा जिस भंडार।

गैरगंभीर है सुसागर अखंड, जिनकुर सेव्या अपना जम दूत न लागे डंड, गुर नाल तुल न लगई खोज ठा ब्रह्मंड, नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन मय मंड, श्री राग मखला पंजवा मिठा करके खाया कौड़ा उपजा साद, भाई मीत सुरत किए दिखिया रचिया बाद, जन दे बिरम न होवई विण नावे बिस्माद, मेरे मन सतगुर की सेवा लाग, जो दिसे सो विण सुना मन की मत त्याग।

या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौने उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों सब फुल्लां की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी परमतया दुलाभ जन्म पायो ए नारक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवा तित्तर वसे सोहेलड़ी।

पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार सत संतोख दया कमावे एक करणी सार आव छोड़ सब होए एना जे दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना दूते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना रखाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही कैन कहामन यो कीर्त करला कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गात अवगत कछ नदर न आया संतन की रेण नानक दान पाया।

का सबसे दे आधार, सतगुर भजन कमावणे सच्चा यो विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार, मेरे साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वस पूर्ण होवे काल, हरहाओ गुर समरत अपार गुर वड़भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर ना कोए, गुर करता गुर करण हार गुरमुख सती सोए, गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए, गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार, गुर दाता हर नाम दे उदरे सब संसार, गुर समर्थ गुण रंकार गुर ऊंचा अगम्य पार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार, जितड़े फल मन बाचिए तितड़े सब गुर पास, पूर्व लिखे पावणे साच नाम दे रास, सतगुर सरणी आया बाहुड़ नहीं विनाश, हर नानक कदे ना विसरो यो जियो पिंड तेरा सास, श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो चूटन सते नाए, गुर के चरण सरेवणे

रहे सुहाग भाई रे अवर नही मैताओ मैं तन्ना मन धान है गुरदिया बल जाओ अरहाओ गुरमत पत साबा तिस तिसके संग मिलाओ रिबन कड़ी ना जीवो बिन ना वे मर जाओ मैं अंधले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ गुरु जिना का अंधला किले ना गीटाओ बिन सरगुर नाओ ना पाई है बिन नावे कैसाओ आए गया पछतावना जो सुन्ये कर काओ बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत तावलग मैल ना पाई है जावलग साज ना चीत सब दरपे कर बाई है निर्वाणी पद नीत हाँ गुर पूछो अपने गुर पुछकार कमाओ शब्द सलाही मान वसे हाँ में दुख जल जाओ सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ सब दरते से निर्मल तक काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सत सदा हर रखे और तार सो क्यों मनो मसारी है सब जिया का आधार सब मरे सो मर गए

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरबिन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये जो बन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन पिर बाद सीगार। दू कणो दोहागणी ना कर सेज पतार, मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सजानी है पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया

साचो साहिब सेवीए गुरमुख अकथो कात आवे जाए पवाईए पए किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन घर नाम ना छुट्टिए गुरमत मिले मिलाए तिस दिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हो में ममता जल बलो लोभ जलो अवमान।

रय बक्से पवित पंडार अरहाओ रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अल को तो सो कणो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अव पीर रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थर हरी आवले एक बूंद न पवि के कर्म मिले सो पाईए किरत पया सिर देह अरे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटने आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वडियाई दे अरे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणामणी तरता करे सोहोए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा रहो न टुटे जे सतगुर पेटे सोए ज्ञान पदार्थ पाईए तेर पवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का घाक होए खेल गए से पंखणु जो चुगदे सर तल कड़ी के मोद के चलना खेल अज के कल जे तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजे ओमे मैल न जाए सो हंग आप शानिये शब्द भेद पतियाए गुरमुख आप शानिये अवर के करे कराए मिलया का क्या मेलिए शब्द मिले पतियाए मनमुख सोजी ना पवे विछड़ चोटा काए नानक दर कर

कौआ कणी पी अंतर गर्भ गुमान, राम नामन विद्या गुरदिया सदान, मरण बुद्धि केतिया केते वेद विचार, केते बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार, सच्चो ओरे सबको ऊपर सच आचार, सबको ऊंचा आखिए नीच न दिसे कोए, एक ने पांडे साजे एक चानन क्यों लोए, कर मिले सज पाइए दुर्बख्श ना मेटे कोए, साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए, अकथ कथा विचारिये ये सदगुरु महे सुमाए, ई अमृत संतोखया दर गए पैदा जाए, काड़ कड़वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुभाए, विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

तन निर्मलो गुरदात करे प्रसोय हराओ राम नाम तन निर्मलो जे देवे दे मुनहार आगे पूछना हो वही जे बेली कुर करतार आप छिड़ाए छुट्टी आपे बख्शन हार मन गुजाने अपने धिया पूत संजोग नारी देख विगासीए नारे हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग चित लेवित जामणु सागत डोल डोलाए बार टूंड गुचीए करमे वस्त सुधाए मन बखोमे कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रगत बिंद का इहो तनो अग्नि पास पिराण पावणे के वस देहोरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगिए मुआरा लोड़े कोए सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए ज्यो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए गुरमत होए विचारिए सुबना एव जग लोए अग्न मरे जल पाईए जो बारक दूते माए बिन जल कमसो नाथिए बिन जल

सिद्ध बहे देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार दार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माय वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनू आखिए जिस सिस न हो वी लेख असमान तरपी चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चले निस सा चले तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे।

है, क्या माया कर्म कमाए, तो सुख ए जीव बद है, हम में कर्म कमाए, पिन शब्दे परम न चूकई, ना विचों हम में जाए, पिन प्रीति भगत न होवई, पिन शब्दे थाए न पाए, शब्दे हम में मारिए, माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाइए, गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए, भगत वछल हर मन मसया, सहज मिलया प्रसोए, नानक सबदे हरसा लाइए, कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा, माया मोह मेरे प्रभु कीना, अपे परम पुलाए, मनम कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी असी जग में चानन, कर्म वसे मन आए।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागणी जिन सए नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लए मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तो तक की कर्म कमाए जियो हो सतगुर विटों कुमाया जेन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए करमस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया कंठ लाए कै रखियोन लगे न तत्ती वाओ जियो मैं मंत्र प्रभु ते आया जिये इछेड़ा फल पाया सा पासा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस भावे तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया।

उत्तम नामक जिन श्रेया सब पोए जियो हर जी सवे प्रतपालदा कर कर मैया सोए तो हर सदा त्याई है इस बिन अवर ना कोए जो मोए माया चित लाए दे छे छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सकाई होए मैं हर बिन अवर ना कोए हर गुर सुननाई पाइये बनजारिया मित्रा वडपाग प्राप्त होए हर हाव संत जनाविन पाइया हर किने ना पाया ना हो विच होमे कर्म कमाव दे जो वेसवा पुत निनाओ पिता जात ना होई है गुर तुठा करे पसाओ वडपागी गुर पाया हर अहेनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ मन हर घर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ हर हाओ जब लग जोबन सास गए तब लग नाम त्याए चल जा नाल घर चलसी हर अंते ले छिड़ाए हों बलेगारी तिन को जिन हर मन उठाया जिनी हर घर नाम ना चेत्यो से अंत गए पछताए तुर मस्त घर प्रभ लिखिया जन नानक नाम त्याए मन हर घर प्रीत लगाए वडभागी गुर।

हर आपे परम भुलाएगा, हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रकाश है, से विरले के ही के हों बलेगारी तिन कौ, जिन घर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रकाशिया, मन हर घर मुठड़ा है, मन हर घर जपन करे, हर गुर सुननाई पज पो जिंदु, साब केल विख दुख पर हरे हरहाओ, धड़कड़ रमैया मन मसे, क्यों पाईए कित पत, गुर पूरा सदगुर पेटी है, हर आए वसे मन चित, मैं तर नाम आधार गए,

पौड़ी। तो ऐसा हर नाम ते आई गए मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। तो ऐसा हर नाम जपी गए मन मेरे, जो अंति अवसर लय छाए। तो ऐसा हर नाम जपी गए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया बड़ भागी, तिन निंदक दुष्ट सा पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नावे अगे आने वाए। श्लोक महला तीजा, वेस करे कुरूप कुलखणी, मन खोटे कूड़ियार। तिर के पाने ना चले, हुक्म करेगा वार। गुर के पाने जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट ना सकी है जो

मेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निबन लागा तेरी पाई तारक मावा जित पावा जा तू दे दयाला जियो प्रभु तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे पै कुंत साई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नांग सो पाया आड़ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया जल थल महियल दहत वरसाया सांध पई बूझी सब तृष्णा अंध पया सब ठाई जियो सुखदाता दुख पंजन खारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नूं आप प्रतपाले

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावनिया रखाओ तन मन खोजे ता ना ओ पाए तापत राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर।

तेरी शरणाई तू आपे सच बुझावणे आ जिन सच जाता से सच समाणे हर गुण गावे सच बखाणे नानक नाम रते बैरागी निरकरताड़ी लामणे आ माज महला तीजा सबद मरे सो मोवा जापे ताल ना चांपे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल जो समाणे सुन मन सच समावणे आ हो वारी जो वारी हर के नाए शोभा पावणे आ सतगुर सेव सच चित लाया गुरमती सह सुमावणे आ रहाओ ताया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल न पाए अन दिन जल्दी फिरे दिन राती बिन पिर बहुत पावणे आ देही जात न आगे जाए जिथे लेखा मंगिए तिथे छुट्टे सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे उथे नाम सुमावणे आ भए भाए सिगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए आन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणे आ सबना फिर वसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ आद ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावणे आ माया मोहे यो जग सुता नाम सार अंत विगुता जिते सुता सो जागाए गुरमत सो जी पावणे आ आप्यो पीए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुक्त गल पाए भगती रत्ता सदा बैरागी आप मार मिलावणे आ आप पाए तंदे लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम त्याए सच राते जो तुस भावे सो कार करावणे आ माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर कै शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाणे सचक सवटी लावणे आ हो वारी जू वारी गुर की बाणी मन मसावणे आ अंजन महे नरंजन।

ठाकुर सदृढ़ाए गुरप्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी ताई सचे सच समावणिया वे प्रवाहो सच मेरा प्यारा किल विख अवगन कट नहारा प्रेम प्रीत सदा तिहाईए पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सची जे सचे पावे आपे देना पुछो तावे सबना जिया का एक दाता सबदे मार जीवा मणिया हार तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुदे सेवी ते तु सारा ही आपे मेल ओ प्रसाचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर न कोई तुदे जेहा तेरी नदरी सीज देहा।

दिन रहन जे प्रभु कौ सेम दे तिन कै सद बलिहार संत अराधन ससद सबना का बगसिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दित्ती अनजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन ना जाई है परमेसर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवे जप हरी दोग सबे ही हंत दिन रहन जिस नाम विसर है सो हरिया हो वै जंत सर्व कला प्रापूर्ण मन ने माणी थाओ हर ओढ़ गई मन अंदर है जप जप जीवान आओ हर कृपा प्रवे अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मिलिए नान क्यों सुआओ सर्व कल्याणा तित देन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मरीद तथा चंद हरड़ा सुया की तुनी।

कमाए, जिन रच रचिया तिसे ना जाने, अंधा अंध कमाए, जां भजे ता ठीकर होवे, धाड़त घड़ी ना जाए, नानक गुर बिन नाहे पत, पत बिन पार ना पाए, महला दूजा देंदे थावो दित्ता चंगा, मनमुख ऐसा जानी है, तुरत मत चतराई ताकि क्या करे आख वखाणी है, अंतर बह के कर्म कमावे, सोच कुंडी जानी है, जो धर्म कमावे इस धर्म नाव होवे, पाप कमाने पापी जानी है, तू आपे खेल करे सब करते, क्या दूजा आख वखाणी है, जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति वे तू बुल है, विण ज्योति कोई किस करो दिखा सियाणी है, नानक गुरमुख नदरी आया आ इको सुगड़ सुजानी है, पौड़ी तुद आपे जगत उपायक, तुद आपे तंदे लाया, मोठ गौली पायक, तुद आपो जगत खुआया, इसना अंदर अग्न है, नै तिरते भुखा तिहाया, सहसा एव संसार है, मर जम्मे आया जाया, बिन सदगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया, गुरमती नाम ते आई है, सुख रजा जां तुद पाया, कुल उधारे अपना धन जने दी माया, तोबा सुरत सुहावनी जिन हर से ती चित लाया, सलोक महला दूजा अखी बाजों वेखना, विन कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना, विन हत्था करना, जीबे बाजो बोलना, क्यों जीवत मरना, नानक हुकुम पछाण कै ताओ खसम मिलना, महला दूजा जिससे सुनिए जानिए, साओ न पाया जाए, रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे ताए, भय के चरण कर पाव के लोयन सुरत करे, नानक कह सियाणिए इव कंत मिलावा होए, पौड़ी सदा सदा तू एक है, तो दूजा खेल रचाया, होम में गर्भ उपाय कर लोभ अंतर जनता पाया, क्यों पावे त्यों रख तू सब करे तेरा कराया।

आए, उत कुटुंब गृह मोहया माए, मनमुख अंधा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अन दिन भगत गुर सबदी होए, गुरमत

भूखे प्रीत होवे अन्न खाए, गुरसिख प्रीत गुरमिल आघाए, हर दर्शन दियो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ। चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्याग।

जिस मिले मन होए आनंद, तो सतगुर कहिए मन की दुविधा बिन सजाए, हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा किरद मिले, हौ खिन खिन करी नमस्कार, मेरा गुर पूरा तू मिले रखाओ, हर कृपा हर मिलिया मेरा सतगुर पूरा, इश पुनी जन केरिया लिस गुर तूरा, हर भगत रड़ावे हर भगत सुने, तिस सतगुर मिलिए टोटा मूल न आवई, हर लाभ निदड़िए जिसको हृदय विगास है, पाओ दूजा नाही नानक तिस।

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदिन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदिन अंध पया बड़ भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया के।

दैद चल चल हांडे गुरपूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया ओ दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन पूरे गांडन गांडे ज्यों पानी कागद बिनस जात है तो मन गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यों हार आखे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो या नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडा है पर साधु अंजलि पुन वड्डा है कड नौ

हर जन घर घर नाम सुमाने, दुख जन्म मरण पव खंडाहे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहुत शोभ खंड ब्रह्मंडाहे, हम गरीब मस्कीन प्रातेरे, हर राख राख वड वड्डा हे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडा हे, गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा, इस गढ़ में हर राम राय है।

मेरे हीरे प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखण को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया।

जियो हर अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रव गाजे जियो आपे शरण पवाएदा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो गौड़ी माज मखला चौथा मैं हर नामे हर बिरो लगाई जियो मेरा हर प्रामित मिले सुख पाई जियो हर प्रव देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखागर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे घर प्रभ केरे जियो जब गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर घर नाम जियो प्राण घर मेरे जियो फिर

की चरणी लाग, सर्व जी है जाके हाथ, कदर विछड़े सब के साथ, उपाय छोड़ गो तिसकी ओट, निमखमाए होवे तेरी चोट, सनिड कर तिस नू जान, प्रभु की आज्ञा सद करमान, गुर के वचन मिटावो आप, हर हर नाम नानक जप जाप, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, गुर का भजन सदा अबनासी, गुर के भजन कटी जम फासी, गुर का भजन जी के संग, गुर के भजन रटे राम के रंग, जो गुर दिया सो मन के काम, संत का किया सत्कर्मान रघाओ, गुर का भजन अटल अशेद, गुर के भजन कटे परम भेद, गुर का भजन कथो ना जाए, गुर के बचन हर के गुण गाए, गुर का भजन जी के साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर के बचन नरक ना पवे, गुर के बचन रसना अमृत तरवे, गुर का भजन प्रगट संसार, गुर के बचन न आवे घर, हे जन होए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में राख्या जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वडियाई, ते प्रभु को आड़ पैर ते आई, रमैया रेन साध जन पावो, गुरमिल अपना खसम तिहाव हरहाव, जिन कीता मूड ते भगता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवे निंद पाई, तो प्रा मन ते बिसरत नाही, जिन दिया निथावे को थान, जिन दिया निमाने को मान, जिन कीनी सब पूर्ण आसा, सिमरो दिन रैन सास गिरासा, जिस प्रसाद माया सिल्क काटी, गुर प्रसाद अमृत बिख घाटी, कौ नानक इसते कशनाही, राखन हारे कौ सहाराही, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, तिसकी शरण नाही पौ सोग, ओते बार कछु ना होग, तजी स्याणप बल बुद्ध विकार, दस अपने की राखन हार, जप मन मेरे राम राम रंग, तार बार तेरे सत्संग रखाओ, तिसकी टेक मने मैं राख।

है मेरा गहना, तुझ निपुण जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तो ही मुझे करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सागुर ते दृढ़या एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त स्वर्ग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेग शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मद मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दे टिकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस गृह में कोई जागत रहे। सावत वस्त को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवास होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सरबनधान, साध पूजनी सदगुर संग। नानक जाग पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेस सुखी होए रही है। ऐसा दाता सुखुर कही है, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हर भाव जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाना।

पाला, तय सहज अखारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता, हारख अनंत सोख नहीं दिया, तो घर गुरु नानक को दिया, गौड़ी महला पनवा, कमन रूप तेरा आराधो, कमन योग ताया ले साधो, कमन गुण जो तुझ ले गावो, काबल मोर पार ब्रह्म रिझावो, रहाओ कौन सो पूजा तेरी करो, कौन सो विद जिद पवजल करो, कमन ताप जित तपिया होए, कमन सो नाम होमे मलख होए, गुण पूजा ज्ञान ध्यान नान सगल कहाल, जिस कर कृपा सदगुरु मेले दयाल, तेसी गुण

गुर के चरण हृदय विसाए, दुख दुश्मन तेरी हते बलाए, गुर का शब्द तेरे संग सहाई, दाल पय सगले जी पाई, गुर पूरे जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पनवा, अनकरसा खाए जसे टोर, मोह की जेवरी बध्य चोर, मृतक दे सासंग बिहुना, आत जात जोनी दुखी ना रहाव, अनक वस्त्र सुंदर पहराया, जो डरना खेद मैं डराया, सगल शरीर आव सब काम, निफुल मान को जपे।

कण बिना जैसे थोतर तुखा, नाम बिहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपूर नित प्राणी, नाम बिहून हृदय बेगानी रखाओ, नाम बिना नाही मुख भाग, परत बिहून कहां सुहाग, नाम सार लगे अनुसार।

स्वामी सबगे तुम ते तू अंतर जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुगज वरते सब तेरा पाणा हुगम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दिस पाई गे वडभागी जाकी राम नाम लिव लागी जाके हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही हर हाओ सरबन धन राखे जनमागे ताके संग केल विख दुख जाहे जनकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्रभु बिनो सुनीजे दास की तूर नान को दीजे गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मन आए

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जड़ का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ ते हर त्यों लिव लागी।

पुत्रै जाए, बिन घर सिमरन सुख नहीं पाया, आरंग फीके सा माया, गुरंगे से पए निहाल, कहो नानक गुर पए है दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमर स्वामी किल बिकनासे, सोग सहज आनंद निवासे, राम जना को राम भरोसा, नाम जबत सब मिट्यो अंदेसा, रहाओ सा संगज पौ ना प्राति, गुण गोपाल गाय गे दिन राति, हर किर प्रभ बंधन छोट, चरण कमन की दिनी ओट, कहो नानक।

मनमय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोड़ जन्म की मन ले जाई रहाओ हर की कथा हृदय बसाई मन बांझत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कर दिवसे भगवान ओ नानक से ही जन पूरे जिना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी मोहल्ला पंजवां खांदा पैन दा मुँह कर पाए इसनु जो है तू तरमराए तिसो बेमुख जिन जियो पिंड दीना होड़ जन्म परमे बोजू न रहाओ सागत की ऐसी है रीत कुछ करे सगल विपरीत जियो प्राण जन मन तन तारिया सोई ठाकर मनो बसारिया बधे विकार लिखे बोकागर नान कुदर कृपा सु

उठत सोवत हर संग पैरुआ जाके सिमरन जम नि डरुआ रखाओ चरण कम प्रदे निवास फगल दूका हो या नास आसा मान तान तन एक सचेसा की मन में टेक मां गरीबिन साध अनाथ नान प्रव राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम अजन कर सूचे और ग्रहण पुन फल मूचे रखाओ हर के चरण हृदय मैं बसते जन्म जन्म के किल विख नस्ते साध संग कीर्तन फल पाया जमका मार्ग दृष्टन आया मन भय क्रम गोविंद आधार ताते छिट्यो बिग संसार हर कृपा प्रभु की नो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरण आई जिन घर जाते मन तन शीतल चरण घर आते पय भंजन प्रामन नाम बसाही डरपत डरपत जन्म बहुत जाही हरहाओ जाके हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथता के पूर्ण काम जन्म जरा मृत जसवात तो समर्थ सिमर साध ग्रास मीत साजन सगा प्रप एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बाहर आखिर दे समाल घर आए गोविंद लय नाल हर हर नाम संत।

राम रवत सधी सो पाया, मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग, हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा, धोती खोल विछाए हेठ, गर्द वांगू लागे पेठ। बिनकर तूती मुक्त न पाई है, मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इसनाना, चुरी कढ़ लेवे हसदाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी, जिया कोत न संगे प्राण।

शरण परे प्रभ अंतरजामी नान कोड पकरी प्रभ स्वामी गौड़ी मोहल्ला पंजवा। हर सिंह राते पाए ना जले, हर सिंह राते माया नहीं चले, हर सिंह राते नहीं डूबे जला, हर सिंह राते सुभल फला, सप मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी गए जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुध सुख रे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ जौला होक सोचो चितव तौ लो दुखन भरे जौ कृपाल गुर पूरा फिटया तो आनंद सहज जेती स्यानप कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जौ लो मेरो मेरो करतो तौ लो बे केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलयो तौ लो डान परे पोट डार गुर पूरा मिलया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्याग्यो री त्याग्यो त्याग्यो मैं गुरमल त्याग्यो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आगे ओ रहाओ मान अवमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरकना आत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासुरी एक स्वामी उद्यान टाग्यो निरपो पय संत प्रमंडार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जोग करतै कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओड़ तुहारी परयो आयो शरण आग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतन मन सीतल थिया सतगुर शब्द सुमाया रहाओ लाती भूख तृष्ण सब लाती चिंता सगल बिसारी करमस्त गुर पूरे करयो मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे रिद अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया टोट नहीं रे मुके आचरज एक सुनो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे पर्दा ठाकुर जो पेटेयो तो बिसरी तात पराई कहो न जाई यो अचंपो सो जाने जिन चाखया कहो नानक सच पय बेगासा गोर निधान हृदय लै राखया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरणी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरणी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद विचारे महापुरखन यों कहया बिन घर भजन नहीं निस्ता।

त्याग खोजे पद निर्वाणा जन नानक यो खेल कठिन है किन्हु गुरमुख जाना गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई एक बिनस एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई रहाओ काम क्रोध मोहबस प्राणी हर मूर्त बिसराई झूठा तान साचा कर मान्यो जो सुपना रहे नाई जो दिस सो सगल बिनस जो बादर की शाई जन नानक जग जान्यो मिथया रहो राम सरनाई गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे आहे निस मगन रहे माया में तो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों हे बिद आप बंधावे मृत से ना जो झूठो।

निस्त निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहया बिखमार, त्रिगुटी छूटी बिम मजहार, गुर की मत जिए आई कार, इन बिग राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया, रखाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पै सूहा रंग माया, नदर पई बिग ठाक रखाया, उल्ट पई जीवित मर जागया, सद रवे मन हर स्यों लागया, हरा संग्रह बिग पर हर त्यागया, पाए बसे जमका पो पागया, साध रहे बादंग अंकारा, चित हर स्यों राता हुकुम अपारा।

मन त्रिवतासिया अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रखो रखवाले, बिन बूझे पशु पै बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर्व तिरपन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परमत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेव, बिन गुर अंत न पाए अपेव, आप भुलाए आपे मत देव, दुर्मत हरनाश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुरु हेत, सहस बहु मद कीट में खसा, हरनाश ले नहो बेदासा, दे संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साध भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल पूले बौर पछतानिया, कांस केस चांडूर ना कोई, राम न चीनिया अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुनोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दार कर महिला से सुखाली, तैन से फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हिर सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहाँ सद पाओ, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, परपंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ, उन्दो कावल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बिना से सगल विकारी, पात मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख शूड़स हर

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भो नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे न लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बहुत पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार

आप हो जाओ, मानव को सूत को कभे न जाए, जितिर शब्द न पीजे हर कहे नाय, रहाओ सबो सूत के जेता मो आकार, मर मर जम्मे वारो वार, सूत क अग्न पौने पानी माहे, सूत क भोजन जेता किस खाहे, सूत क कर्मन पूजा होय, नाम रते मन निर्मल होय, सदगुर सेवे सूत क जाय, मरे न जन्मे काल न खाए, शास्त सिमरत सो देखो कोय, विण नावे को मुक्त न होय, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए, गौड़ी मोहल्ला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा, हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख शोभा साज दुआरा, पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा रहाओ, गुरमुख विचो हो में जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहु चतराई, जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजो लाए भय नित्याना, जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुर दाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पद नामे वड्याई।

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निभा है, सो सजम मेरा मन चाह है, हर की प्रीत सदा संग चाल है, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ, बिन सतनाही छोड़।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

सुबाज वखर कोई ना सूझे, नाम लेवो खेन खेनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम महारस मीठा, गुर पूरे सज पाया।

परम चुकाए, गुर परम चुकाए, इयों मिलिए माए, ता सा थान सुख पाए, गुर सेवा बिन कूर अंधार, बिन गुर

भावे अन ना पानी, पानी अन ना भावे, मरिए भावे, पिन पर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, जो मिले तवे मिलाईए, आपे मिल ले सुखदाता, आ मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना तिर मरे न जाए, गौड़ी मोहल्ला तीजा, कामन हर रस वेदी जियो, हर के सहज सुपाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सहज सुमाए, दुबदा सहज सुमाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, यो शरीर कूड़ कुसत परया, गलताई पाप कुमाए, गुरमुख भगत जित सहत उपज।

एक नाम ले मने परो यैया जन्म नहारिये और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुर पूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक आत सुंदर कुलीन चतर।

अपरस उद्यानी राम नाम संग मानी हेता जो कुछ कीनो सौ अनेता होवाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसे गोपाला श्लोक कुंड चार दैस प्रमेय कर्म कृत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी तत्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेड़त को नहीं होत कह दो उबारा करने हार न भूलन हारा काहू पंथ दिखारे आपे काहू उद्यान परंत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो तो नानक लीनो श्लोक खात खर्चत वृक्ष तरह टूट न जाए पंडार हर घर जप्त अनेक जान नानक नाए सुमार पौड़ी खखा खूना कश नहीं ते समर्थ कह पाहे जो देना सो दे रहो भावे तय ते जाहे खर्च खजाना नाम तान या भगतन की रास हिमा गरीबी अंध सहज जबत रह गुणतास खेले बिगसे अंध स्यों

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए। टहे पर टहेद अब टहे परे, साजना सुरनाए दुखे फाहे काटिया, नानक लिए सुमाए।

आया उस्तद करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मन मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप शाड एयाना हिकमत हुक्म न प्रपति आना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक न जाई सोउ सोउ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे सलोक हर हर मुखते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मेरा वरहया तान तनंतर सोए पौड़ी फेरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान होवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हों छुटके हुए आनंद ते हो नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत किरपाला ओरे कछु न किन्हू किया नानक सब कछ प्रवते हुआ सलोक लिख कते ना छूटी है खिन खिन फूलनहार बख्सन हार बख्सले नानक पार उतार पौड़ी लूण हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण तैद ढूंढन जाए देवन हार दा तार प्रभ निमख न मने बसाए लालच चूड बेकार मोह या संपे मन माहे लंपड़ चोर निंदक मह तिनहू संग बिहाए तुद पावे ता बख्स लहे खोटे संग खरे नानक भावे पार ब्रह्म पहान नीर तरे सलोक खात पीत खेलत हस्त भरमे जन्म अनेक भवजल ते कढ हो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुर वचन समाए खेमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर पई अंध सुख विश्राम खेप निमाही बहुत ला।

गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन।

मिथ्या त्रो मो अभमान, मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर, मिथ्या नेत्र पेखत परतरे रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर्व कार को थावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तान नहीं पर पुकारा, मिथ्या बस ले दिवकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सबल दे नानक हर हर नाम लय, बिरती सागत की आरजा, साज बिना के होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना जो खेती जाय, गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जान नहार प्रभु परवीन, बार पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आपत जावत जन्मय मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पाने तिन प्रवजत, नानक उन जन चरण परत, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप करत नबेरा, किसे दूर जिनावत, किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यान पर सगलते रहत, सब का जाने आत्म की रहत, जिस पावे, जिस लय लड़ लाए, थान सनंतर रहा सुमाए, तो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी श्लोक, काम क्रोध अर लोभ मोह, फिर सजाए अहमेव, नानक प्रसरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव, अष्टपदी, ये प्रसाद शक्ति अमृत गाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, ये प्रसाद सुगंधत तन लाभ है, तिस को सिमरत परम गद पाव है, ये प्रसाद बसे सुख मंदर, इसे त्याय सदा मन अंदर, ये प्रसाद त्रे संग सुख बसना, आठ पै सिमरो तिस रसना, ये प्रसाद रंग रस कोग, नानक सदा त्याये त्या मन जोग, ये प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्याग तद अवर लोभावे, ये प्रसाद तुग सेज सोई जे, मन आड़ पैरता का जस गावी जे, ये प्रसाद तु सब को माने, मुक्ता को जस रसन बखाने, ये प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म, प्राप जी जबत दरगह मान पावे, नानक पासे ती कर जावे, ये प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावो तस राम स्नेही, ये प्रसाद उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत, ये प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकर प्रोताके, ये प्रसाद तुको ना पहुचे, मन सास सास सिमरो प्रभुचे, ये प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करेहे, ये प्रसाद अपूखन पैरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय, ये प्रसाद असव हस्त असवारी, मन ते प्रभु को कभू नाम सारी, ये प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत से ते आई, तिसे ते आए जो एक अलख है, ईगा ऊगा नानक तेरी रख, ये प्रसाद करे पुन बोदान, मन आड़ पैर कर सका ध्यान, ये प्रसाद तू आचार व्यवहारी, ते प्रभु को सास सास चितारी, ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप, हो प्रा सिमरो सदा अनूप, ये प्रसाद त्रिनी की जात, हो प्रा सिमर सदा दिन रात, ये प्रसाद तेरी पत रहे, गुर प्रसाद नानक जस कहे, ये प्रसाद सुने करनाद, ये प्रसाद पेखे विस्माद, ये प्रसाद बोले अमृत रसना, ये प्रसाद तुग सहजे बसना, ये प्रसाद कर चले, ये प्रसाद संपूर्ण फल है, ये प्रसाद परम गत पाव है, ये प्रसाद तुग सह सुमाव है, ऐसा प्रत्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, ये प्रसाद तू प्रट संसार, ते प्रभु को मूल न मरो विसार, ये प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता को जाप।
जे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तेरे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साथ अरे मन मेरे तू तस्यो रात जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जब सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सुहर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रसो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्वदान प्र तेरी मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ तित लगे हरनाथ नानक इनके कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता सात जना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल होत सा संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रवनेरा सा संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रमहे सुमानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा सा संग अमृत रस पुंचा सा संग हो सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतहु तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पिन सा संग नानक प्रसो प्रसन्न सा संग दुश्मन सा मीत साधु कै संग महा पुनीत सा संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न बीगा पैर साध के संग नही को मंदा सा संग जाने परमानंदा साध के संग नही हो ताप साध के संग तजे सवे आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबहू तावे साध के संग सदा सुख पावे सा संग बस्त्या गोचर लहे साधु कै संग अजर सह साध के संग बसे स्थान ऊचे साधु कै संग महल पहुंचे साध के संग त्रिड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधार सा संग साजन मीत कुटुंब निस्तार साधु कै संग सो तन पावे जिस तन ते सबको वरसावे सा संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सबल जनम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पेटत होत निहार साध के संग कलुख तहर साध के संग नरक परहर साध के संग ईगा उहा सुहेला सा संग बिशरत हर मेला तो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उधरे सा सुन रस साध के संग सुनो हर नाव सा संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसर सा संग सर पर निस्तर साध के संग लगे प्रामीठा साधु के संग कड़का डीठा सा संग पै आज्ञाकारी सा संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक सब पेटे संजोग साध की महिमा वेदना जान है जेता सुने तेता बखियान है साध की उमा त्यो गुण ते दूर साध की उमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊजते ऊची साध की शोभा मूजते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक सबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट सुमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान।

सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊज ते ऊंचा मन अपने गए सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब परमय ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह। ब्रह्म ज्ञानी कै नागी तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हो सो पला ब्रह्म ज्ञानी सोबल पला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सिद्ध का करता ब्रह्म ज्ञानी ता जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर धारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी, नित्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रे रूपना पेखे नेतर साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा तब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे।

प्रभ भावे सोई पुन हो पसर आप हो अंत तरंग लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट सबका विचार कई कोट नर्तन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पावे कई कोट पय अवमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपेग आत्मन कोर कई कोट पर दर्व को हिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बह कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस साधक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र कई कोट कीरतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की है त्रिजीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण तीव कई कोट जख किन्नर प्रसाद कई कोट भूत प्रेत तुकर मिर्गात सब ते नेरे तहू ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोजो नी फिरे कई कोट बैठ ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट की ए तरवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सबज प्रभ कह हाथे कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिल ने विलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म रखनते कई कोट दर्शन प्रप्यास जिन को मिले ओ प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार।

प्रवते हुए प्रम है सुमात ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते तुम प्रगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस तुख सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जो भावे सोई होग खिन में था व्युथा पनहार अंत नहीं किस पारा वार हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ भावे मानु गद पावे प्रभ भावे ता पात्र त्रावे प्रभ भावे बिन सास ते रख।

करंग हस कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ऊबकस पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कभू नित करे बोपात कभू सोए रहे दिन रात कभू महा क्रोध विकराल कभू सर्व की हो तरवाल कभू होए बहे बड़ राजा कभो पेखारी नीच का साजा कभू अब कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे यूं प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कभू होए पंडित करे बखियान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तड़ती स्नान कभू सिर साधक हो ज्ञान कभू कीड हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

अनदरूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना बिद कीनो विस्तार प्रभ अवनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सोनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पावन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गद पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख स महे सुमाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत तेजन जाकर दे परवेश सत निरत बूझे जे कोय नाम जपत ताकि गद होय आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टो करने हार अवरना बूझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जोत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बुझत आया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुर के बदन पदार्थ लहे वे दाते दो कटनहार जा के संग तरे संसार जन का सेवक सोवट भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आदे सच जुगादे सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सस परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यामनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रसोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करामन तिन मूल पछानिया जा किरदे विश्वास प्रवे आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निरप होए बसाना जिसते उपजै तिस माए सुमाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको पिन न कहे ना जाई बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा

रंग सेवक को प्रपालनहार सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गतमित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव्य पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच कर हे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत यो मन तन त्रपिए नामृत जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कान सो प्रसमरथ विरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाचे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पजहर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्वनदान मैं हर नाम नदान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्धो हर कै नाए दैस ताव ते आवे ठाए ताको बिगन ना लागे कोए जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी

आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का होए उधार हर घर सिमर प्राण आधार अनक पावन छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अरबंता इन ते कहो तुम कमल सनाथ राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कमल छुटकार आस हस्ती रस असवारी झूठा डंप चूड पासारी जिन दिए ते बुझे ना बिगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माघे जन्म जन्म के किलबिख जाघे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गद पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुपाए नान गुण गाओ गुण गाव तेरी उतर समैल बिन सजाए होमे दिख पैल होए चिंत बसे सुख नाल साध गरासगर नाम सुमाल छाड़ सियान सगली मना सा संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार ईहा सुख दर्ग है जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप ए भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक अराध प्राश्त गए मन तन अंतर ए प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रा बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी याचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम ताजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल सों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हारस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जिन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सोभर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सन्यान सब त्याग अंतर परगास अनदिन निवलाग बड़भागी जप्या प्रसोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जनको प्रभ होयो दयाल सेवक कीनू सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख प्रम गया इस पुन्नी सरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम सुमाए सो क्यों बिसरे ये काल ना पन सो क्यों बिसरे ये की आ जाने सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगर मैं रख गुर प्रसाद को बिरला लाख है।

नेत्रों पेख दर्द सुख होय, मन बिकसे साध चरण तोय, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को उपावे संग, एक बल्दी जे कर्मया गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नान करया सर्व सुमाय, प्रभ संत दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जप सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन गीत, हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अंतराज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर घर नीत, पली सुकरणी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत, साध संग प्रद्यो निवास, सर्व सुख नानक परगास, श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब अकार, यो कशना दृष्टेता, पाप उन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाध, ता बैर विरोध के संक मात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सोग हो किसे व्याप्त, जब अपने आप पार ब्रह्म, ता मोह कहाँ कस होवत परम, अपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा, जब होत प्रभ केवल तनी, ता बंद मुक्त को किस को गनी, जा बेके घर अग्नि अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रसहित सुपाय, तब से सकत कहो कत जाय, जब आपे आप अपनी जोत तर, तब कमन निडर कमन कल डर, अपन चलते आप करने हार, नानक ठाकुर अग्नि अपार, अविनाशी सुख अपने असन, ते जन्म मरण कहो कहाँ बिनासन, जब पूर्ण करता प्रसोय, तब जम की त्रास कहो किस होय, जब अवगत अगोचर प्रावेक, तब चित्र गुप्त इस पूछत लेख, जब नाथ निरंजन अगोचर अगध, तब कौन छुटे कौन बंधन बद्ध, अपने आप की अचरजा, नानक अपन रूप आप की उपरजा, ये निर्मल पुरख पद होता, तय बिन मैल कहो क्या तोता, जय निरंजन निरंकाल निर्वाण, ते कौन को मान कौन अवमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तय शल छिद्र लगत कौ कीस, जय ज्योत स्वरूपी जो संग सुमावे, ते किसे पूख तमन त्रिवतावे, करण करामन करने हार, नानक करते का नाय सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुध पाई, जय सर्व कलाया पे परवीन, तय वेद कतेव कहाँ को चीन, जब अपने आप उर तार, तो सगन अब सगन कहाँ विचार, जय अपने ऊच अपने आप नेरा, ते कौन ठाकुर कौन कही है तेरा, बिस्मन बिस्मर है बिस्माद, नानक अपनी गत जन हो आप, जय अचल अछेद पे सुमाया, ऊगा किसे व्यापत माया, आस को अपे आदेश, यो गुण का नाही प्रवेश, जय एक एक एक भगवंता, ते कौन अचिंत इस लागे चिंता, जय अपने आप पतियारा, ते कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस को आपे पहुंचा, जय आपर चोपर पंचकार, यो गुण मैं किन्नु विस्तार, पापुन ते पई कहावत, को नरक उ सुर्ग बंशावत, आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पय पार, दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखियान, अपन खेल आप कर देख, खेल संकोच हो नानक एक, जे अवगत भगत तय आप, जे पसरे पासार संत प्रताप, धूपा काया पे तनी, उनकी शोभा उनहू बनी, आपे कौतुक करे अंध चोज, आपे रस पोग निरजोग, जिस पावे तिस अपन नाए लावे, जिस पावे

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजी है, मलहो में कड्ढे तोय, सच वणन जय रंग स्यों, सच सौदा होए, टूटा मूल न आवई, लहार पावे सोए, नानक तिन सच वणन जया, जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी, सालाही सच सालाना, सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मनवसे, सच सच्चा हरख वाले, सच सच्चा जिनी अराध्या, थे जाय रले सच नाले, सच सच्चा जिनी ना सेवया, थे मन मुख भूड़ बेताले, ओ आल पताल मोह बोल दे, जो पीते मद मतवाले, वाले,

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुझ जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हवठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ

जन राता साध संग गुण गाया सब दुख है खाता नानक सोई जीवया जिन एक पिछाता श्लोक महला पंजवा खखड़िया सुहाविया लगड़िया अक कंठ बेह विछोड़ा तनी स्यों नानक सह सह गंठ महला पंजवा विसारे दे मर गए मर पे ना सके मूल वेमुख होए राम ते ज्यो तस्कर उपर सूल पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया जल थल महियल पूरिया कट कट हर पणिया ऊच नीच सब एक समान कीड हस्ती बनिया मीत सखा सुध बंद पो सब तिसदे जनिया तुझ नानक देवे जिस नाम तिन हर अंग मणिया श्लोक महला पंजवा जिन्ना साध ग्रास ना विसरै हर नामा मन मंत तन से सेई नानका पूर्ण सोई संत महला पंजवा अठे पैर पौंदा फिरे खावण संदड़े सूल दोजक पौंदा क्यों रहे जा चित न होए रसूल पौड़ी तिसे सरेवो प्राणी हो जिसदे ना हो पल्ले ऐथे रहो सहेलिया अगे नाल चले कर बंदो सज धर्म का गढ़ थम अहल्ले ओट लयो नारायण दीन दुनिया चले नानक पकड़े चरण हर तिस दर गए मल्ले श्लोक महला पंजवा जाजक मंगे दान दे प्यारिया देवन हार दातार मैं नित चितारिया निखुट न जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तेन सब किश सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उत अमृत वंडी है सुखिया हर करणे जमके पंथ न पाई है फिर ना ही मरणे जिसनु आया प्रेम रस तिसे ही जरणे बाणी उचरे साध जान अम्यो चले चरणे पेख दर्शन नानक जीवया मन अंदर तरणे श्लोक महला पंजवा सतगुर पूरे सेवे है।

दोहा महला पंजवां, एक जैसा जन्म मैं किया सर्व कला समरथ, जीव हमारा खनिए हर मन तन संदड़ी वत्थ। महला पंजवां, जे कर गह प्यारड़े खुद ना छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोजग कै सूल। पौड़ी, सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जान पापा मलत होवे, चरण कम हिरदय वसे संकट सब खोवे। गुरपूरा जिस पेटी है मर जन्म ना रोवे, तब दस प्यास नानक कणी किरपा कर देवे। सरोक दखना महला पंजवां, ओरी परमजाए तेरी मोहब्बत हेक तू जिथो वंजे जाए, तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवां, चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी, हंसा सेती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी, रसना उचरे हर श्रवणी सुने तो उदरे मिता, हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पवित्ता। हर सड़ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता, संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता। नानक लड़ लाए उदारियन दईयो सेव अमिता,

राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए, जे पावक सुर नर है जारे, राम उदक जन जलत उबारे, पाव सागर सुख सागर माही, पीवरे जल निखुड़त नाही, कह कबीर पज सार्ग पानी, राम उदक मेरी तिखा बुझानी, गौड़ी कबीर जी माधव जल की प्यास न जाए, जल में अग्न

तू तरवर हो पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर आओ नाओ तन चेला, कहे कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जाने आ, तब लोगे काहे दुख माने आ। हम अपत अपनी पल खोई, हमरे खोज परो मत कोई रखाओ। हम मंदे मंदे मन माही, साझ पात काहू सो नाही। पात अपात ताकि नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कौ कबीर पद हर प्रमाण, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जाओ पाइये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब नहीं चीन सयात्म राम। हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई। बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गद पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादर पानी माही। जाओ पै राम राम रत नाही, के सब धर्म राय कह जाही। रहाओ काया रत बहु रूपर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कर सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्व छोट

आप मोए मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्मा किए बहु रंगा ऐसे कार हम बहुत बसाए जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शतरपत कबहू पेघारी सागत मरे संत सब जीव राम रसायन।

हर हर बास सुगंध बसाई तहर कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब तंदा गौड़ी कबीर जी ते पदे चार तुके जम ते उल्ट पए गए राम दुख बिन से सो कियो विश्राम बैरी उल्ट पए गए मीता सागत उल्ट सुजन पै चीता अब मुझे सर्ब कुशल कर मानिया साध पई जब गोबिंद जानिया रहाओ तन मैं होती कोड उपाद उल्ट पई सुख सहज समाध आप शाने आपे आप रोग ना व्यापे तीनों ताप तब मन उल्ट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख सहज समाव आप ना डरो ना अवर डरावो गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जो के कर जाता शब्द अतीत अनाह दराता जिन राम जानिया तिने पछानिया जो गूंगे साकर मन मानिया ऐसा ज्ञान कथे बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करो जे बौर ना करना सो पद रवो जे बौर ना रवना सो त्यान तरो जे बौर ना तरना ऐसे मरो जे बौर ना मरना उल्टी गंगा जमन मिलावो बिन जल संगम मन में नावो लुचा संसर यो व्योहारा।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ। जे कड़ राम रहया भरपूर, तिन की पाग।

नारी या तत लियो शरीर बिचारी। कहे कबीर ठग सो मन मानिया गई ठगौरी ठग पहचानिया। आ मोको पए राजा राम सहाई जन्म मरण कट परम गद पाई। हराओ साधु संगत दियो रलाए पंच दूत ते लियो छिड़ाए। अमृत नाम जपो जब रसना अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर पुकार काढ़ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों लागी प्रीत गोविंद बसे निता नित चीत। माया तप्त बुझिया अंगयार मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रस्वामी जत पेखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दरड़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई। जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल के सूतक थल के सूतक सूतक ओपत होई। जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक सूतक परज बगोई। कौरे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। रघाओ नयनो सूतक बहनो सूतक सूतक श्रमणी होई। उठत बैठत सूतक लागे सूतक परे रसोई। फासन की बेद साव को जाने छूटन की एक कोई। कहे कबीर आराम हृदय बेचारे सूतक तिने न होई। गौड़ी झगड़ा एक न बे रहो राम जो तुम अपने जन सौ काम। हरहाओ यो मन बड़ा के जासो मन मानिया। राम बड़ा कै रामे जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया वेद बड़ा के जाते आया। कहे कबीर हो पया उदास तीर्थ बड़ा के हर का दास। अराग गौड़ी चेती देखो पाई ज्ञान की आई। आंधी सवे उड़ानी प्रम की टाटी रहे ना माया बांधी। हरहाओ तु चित्ते की दो थून गिरानी मोह बलेंडा टूटा। तिसना शान परी तारी ऊपर दुर्मद पांडा फूटा। आंधी पाचे जो जल बरखे ते तेरा जन पीना। कहे कबीर मन पया परगासा उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुने न हर गुण गावे।

परगासेओ जिना गुण पड़ी कड़ पीतर इंद टाण बसायो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार की ओबन जारा हरहाओ काम क्रोध पय जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान नबेर टांडा उतरे ओ पारा कहेत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बने आई घाटी चढ़त बैल एक थाका चलो गोण छिड़काई गौड़ी पंच बदा पेवकड़े दिन चार है सहुरड़े जाना अंधा लोक न जानई मूर्ख ए आना कौ डडिया बाधे तन खड़ी पाहु कर आए मुकलाऊ आए हरहाओ हो जे दिसे खूड़ी कौन लाज वगारी लाज कड़ी स्यो तूड़ पड़ी उड़ चली पनहारी साहेब होए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागण जानिए गुर शब्द बिचारे किरत की बांधी सफेरे देखो बिचारी इस नू क्या आखिए क्या करे विचारी पई मेरा सी उड़ चली चित बंद न तीरा हर की चरणी लाग रहो भाज शरण कबीरा गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा अवर न दूजा पाई रुंडत मुंडत एक शब्दी एक कह सिद्ध पाई हर बिन परम भोला ने अंधा जा पै जाओ आ छुटकावन ते बांधे बो फंदा हरहाओ जै ते उबजी तई सुमानी एवद बिसरी तबगी पंडित गुणी सूर हमदाते एक कह बढ़ हमगी जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है सदगुर मिले अंधेरा चूके इन बिद मानक लईये तज बावे धाने बिकारा हर पद जिरड़ कर रही है कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार सदगुर प्रसाद जय कश आह ता कश नागी पंच तत् तय नागी इड़ा पिंगला सुख मन बंदे ए आव गान कत जाही तागा टूटा गगन बिरस गया तेरा बोलत कहां सुमाई ए संसार मोको अन दिन व्यापे मोको को ना कह समझाई रघाओ जैवर पंड पिंड तय नाही रचनहार तय नाही जोड़नहार उसदा अतीता ए कहिए किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बेनासी ताको ठाकुर ताको सेवक को काहू कह जासी कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती हुआ का मर्म वही पर जाने हो तो सदा अविनाशी गौड़ी सुरत सिमरत दो कन्नी मुंदा पर मित बार खिंता सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जित पंथा मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ खंड ब्रह्मंड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दे तूंबा करी है जुग जुग सार दिशा जी फिर पीतंती तूड़ सनाही अनहद किंगुरी बाजी सुन मन बगन पए गए पूरे माया डोल ना लागी कौ कबीर ता कौ पुनरब जन्म नहीं खेल गयो बैरागी गौड़ी गाज नाव गाज दस गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नवखंड बहत्तर पाड़ लगो अधकाई गई बुनामन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये पाचन शेर अठाई जाओ कर पाचन बेग न पावे जगर करे कर गाई दिन की बैठ खजम की बरकस ए बेला कते आई चूटे कुंडे पीगे पुरिया चलो जलाहो रीसाई शोशी नली तंत नहीं निकस नतर रही उर जाई छोड़ पसार इहां रो बपरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए जित कड़ नाम न उपजे हूट मरे जन सोए सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोह हरहाओ साध मिले सिद्ध पाईए के एहो जोग के भोग दो मिल कार्ज उपजे राम नाम संजोग लोग जाने यो गीत है यो तो ब्रह्म विचार ज्यों कांसी उपदेश होए मानस मरती बार।

कौ कबीर संसा नहीं, अंत परमगत पाए गौड़ी, जेते जतन करदते डूबे, भवसागर नहीं तारियो रे, धर्म धर्म करते बो संजम, अंग बुद्ध मन जारियो रे, सतगुरा को दा तो ठाकुर, तो क्यों मनो बसारियो रे, हीरा लाल अमोर जन्म है, कौडी बदले हारियो रे, हरहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी, हृदय नहे बिचारियो रे, उन मतमान हिरे ओ मन माही, गुर का शब्द ना तारियो रे, स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद्रस लयत बकारियो रे, कर्म पाल संतन संगा ने, काष्ट लो उधारियो रे, तापत जोन जन्म प्रमथा के, आप दुख कर हम हारियो रे, कहे कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तारियो रे, गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे, चलतर चो जगदीश काम सुवाए, गज पद परे मन बौरारे, अंकस सहे ओ शीस, बिखे बाच हर राज समझ मन बौरारे, निरपय होए न हर पदे मन बौरा।

कयो मन बौरार माया यो व्यवहार जैसा रंग सुंभ का मन बौरार त्यों पसरियो पासार नावन को तीर्थ कने मन बौरार पूजन को बो देव कहो कबीर छूट नहीं मन बौरार टूटन अगर की सेव गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन है तस्कर नेर न आवे राम न तन कर संचौनी सो तन कथी न जावे हमारा तन माधो गोविंद तरणी तार ए सार तन कही है जो सो प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लई है हरहाओ इस तन कारण सिर संकादक खोज पै उदासी मन मुकंद जेबा नारायण परे न जम की फासी निज तन ज्ञान पद गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पो पग कहे कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असभस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी जो कब के कर मुष्ट चनन की लुब्ध न त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच सियो ते फिर गरे परे हो भगत बेन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बेन कही ना सच रहो रखाओ जो उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किने ना कराओ लयो तैसे प्रमत अनेक जोन में फिर काल हयो या तान जोबन आर सुध दारा पेखन को जो दयो तिन ही माहे अर्ग जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औध अनल तन तिन को मंदर चौध ठाट ठयो कहे कबीर ऐ सागर तरण को मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी

इस माटी में पम समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिलस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार्षद एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रगाओ, गर्भ जोंग में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगतो रसी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर नटायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, डरके नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परमन धान रखाओ, क्या जाप क्या तव संजमो।

बैकुंठ जाइए ना पदार्थ मने बसाइए। हृदय सुजो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक तोए। निंदा करे सो हमारा मीत निंदक माए हमारा चीत। निंदक सोजो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लोर। निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो तरन तारन राम राया। अरहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पय है एक के देखत मन पतिया ही। जब बुध होती तब बल कैसा अब बुध बल ना खटाई। कहे कबीर बुध हर ली मेरी बुध बदली सिद्ध पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी बस अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्प प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मान जागत हो रे पाई गाफल हो के जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ पंच पैरुआ दर में रहते इनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चेत होए रहो तौले प्रगास उजारा। नाव कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई। कैत कबीर नवे कर मुसे दसवें तत् सुमाई। गौड़ी माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना। फिर सुनकाद जस गुण गावे तस बसे मोरे प्राणा ना। रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पय बंधन पग मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्राप्त दूसर मने ना आना ना। चंद्र बाज पय मन बासन त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाये त्याय ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़पा बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सह प्रगास्यो एक एक समाना ना। कहे कबीर गुर पेट महासुख परम तरह मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बामन

चरलो त्रै साब कश इन गीम आ गए ए अखर खिर जाएंगे ओए अखर इन मैन आ गए जा बोलते चिर आवा जय अबोल तय मन ना रखावा बोल अबोल मद है सोई जस ओ है तस लखे ना कोई अले लहो तो क्या कहो कहो ता को उपकार बड़क बीज मैं रव रहे हो जाको तीन लोग विस्तार अले लहंता पेद शय कश कह पायो भेद उल्ट पेद मन पेद्यो पायो अपंग अछेद तुर्क तरीक तजानिए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारण कशुक पढ़िए ज्ञान ओंकार आदि मैं जाना लिखे अर मेटे ताए न माना ओंकार लखे जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल में पावा सद विकास संपट नहीं आवा हर जे तह कुछ मरस पावा आके कहा कह का समझावा खखा ए खोड़ मन आवा खोड़े शाड़ ना दैद सतावा खसमे जान खिमा का रहे तो होए नख्याओ अखे पदल है गग्गा गुर के बज

आद करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

मोसो को ना कह समझाए, जाते आवा गम बिलाए, रहाओ बौद्ध धर्म न रूपी है, करता दिसे सब लोए, कम कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा साध हृदय बसे, कौन घेरे अवमान, बार उदक पखारिये, कड़ पीतर बेबद बेकार, सुध कमन पर होए बो, सुझ कुंचर बेद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जसा गात, जांत सब संसार, पारस मानो तांबो छोए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर पेटिये, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मान मन गी मिले, छुटकत बज्र कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, तारी न टरे परम फास, प्रेम भगत नहीं उपजे, ताते रविदास उदास, एक ओंकार, सत नाम करता पुरख, निरभौ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सह पंग, गुर प्रसाद, राग आस महला पहला, कर पहला सोदर, सो दर तेरा केह, सो कर केह, जित बै सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेके संख,

मन का अंधला माया का बंद खीन खराब होवे नित कंद खान जीवन की बहुती आस लेखे तेरे साध गिरास ऐस अंधले दीपक दे भौजले डूबता चिंत करे कहे सुने जो माने नाव।

आए, नदर करे ता सदगुरु मिले, परमत नानक पहुंच जलता रहे। आसा महला पहला पंच बदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसर है दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही। हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पौन ना वाजे, चरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे। अखर देख बाग पै चोखी, सिंचित भाव करेगी, सब ना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेगी। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही। दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावे जियो रहे नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही। कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही। आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुसपाती। हर नामा जाजा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ। बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम सुमाल। ऐथे उथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर ना पाल। तीने तत गगन दा द्वार, हर मुख पाड़ पड़े बीचार। भोजन पाओ परम पाओ भागे, पारू रश बचोर न लागे। तिलक ललाट जाने प्रवेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक। आचारी नहीं जीत्या जाए, पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए। अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई। ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन पुन गोई। तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार। गुरमुख साचे साचे दरबार रखाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास। मैली खजम सुने साबास, सच्चे तख्त बुलावे सोए। देव डियाई करे सो होए, तेरा तान तू है दी बाण। गुर का शब्द सच निशान, मन ने हुक्म सु प्रगट जाए। सच निशाने ठाक न पाए, पंडर पढ़े वखाने वेद। अंतर अवस्त न जाने भेद, गुर बिन सूझी बूझ न होए। साचा रव रहा प्रसोए, क्या हो अखा अख वखाणी। तू आपे जाने सर्व वडाणी, नानक एको दर दी बाण। गुरमुख साजता गुजरान, आसा महला पहला। काची गागर दे दुखेली, उपजे बिनसे दुख पाई। यो जग सागर दुत्र क्यों तरिए, बिन हर गुर पार न पाई। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोए हरे। सर्बी रंगी रूपी तू है, तेस बगसे जिस नदर करे रखाओ। सास बुरी कर वास न देवे, फिर स्यों मिलन ना दे बुरी। सखी सजनी केखो चरण सरेव, हर गुर कृपा ते नदर तरी। आ विचार मार मन देखया, तुम सामीत न अवर कोई। ज्यों तू रख तिभगी रहना, दो सुख देवे करे सोई। आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आसन रास पई। तुरियावस्था गुरमुख पाई है, संत सभा की ओट लगी। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख पेवा। नानक राम नाम मन रत, गुरमत पाए सहज सेवा। आसा महला पहला, पंच पदे मोह कुटुंब मोह सवकार। मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर परम तजो तुम वीर। साच नाम हृदय रवे शरीर, रहाओ सच नाम जा नवन दपाई। रोवे पूतना कल पैमाई, एत मुए डूबा संसार। गुरम कोई उतरे पार, एत मुए फिर जूनी पाहे। मोहे लागा जमपुर जाहे, गुर दिखिया ले जब तब कुमागे। ना मो टूटे न थाए पाहे, नदर करे ता यो मो जाए। नानक हर्षों रह सुमाए। आसा महला पहला,
آپ کرے سچ الکھے پار ہو پاپی توں بخشن ہار تیرا پانا سب کچھ ہووے من ہڑ کیتے انت وگوے رہاؤ من مکی مت کوڑ ویاپی بن خس سمرن پاو سنتاپی دورم تیاگ لہا کچھ لے وہ جو ابجے سو الکھ پیو ایسا ہمارا سکھ

का जंसु मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक करती ले पाग हरगाओ बिंड पतल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे यो मेरा आधार गंग बनारस सिर्फ तुम्हारी नावे आत्मराव सच्चा नामता थी या अहस लागे पाओ एक लोकी और शमशरी ब्राह्मण वट पिंड का है नानक पिंड बख्शीस का कभू निखूड सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवत्या दर्शन कहता आई दुख भूख तीर्थ की है योगी जति जुगत में रहते कर कर भगवे तेग पै तो कारण साहेबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता

दर कर मैला गस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश गए पीर पे कंबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पे साध सहज सुख रस गजिले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द बंद दर तेरे नाम रते दरवेश पे खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी शिखा सूत तोती कीनी तू साहेब तू संगी तेरा।

सब नाका सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार नकाई। आपे जोड़ छोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाओ तराए वड्डा साध करे मन पाने। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किश पाए नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतारा गुर का दर्शन अगमे पारा। गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे प्रवास आधार। निगुरे कौ गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे।

आखे तू सुपाए, भगत भंडार दिगे घर अपने गुण गाक वणज ले जाए। एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग आसा कर अठवे के काफी महला चौथा। आया मरण तुरा हो हमें रोइये, गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होइए। गुर पूरे साबास चलन जानिया, लहा नाम सुसार शब्द सुमाणिया। रखाओ पूर्व लिखे ढे से आए माया, चलन आज के कल तुरो फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिन्नी नाम सारिया, जुए खेलन जग के ओ मन हारिया। जीव मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सचे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी बुझ सच समाया, जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सत्यार मैल बुलाया, रहाओ अंतर नाम निधान गुरमुख पाईए। अंदर नाम त्याय हर गुण गाईए, अंतर वस्त अनेक मन को नहीं पाईए। होमे गर्भे गर्भ आप खुवाईए, नानक आपे आप खुवाईए। गुमत मन परगास सच

रब रहे आप सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु।

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक ऐ ला जन्म गवाया, पहुँच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया, रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे बुकारा, निंदकी गत तथु नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतन टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सगाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिए रुढ़ाई, आसा मोहल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहा काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुस रोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरी, नाम न सुई डोरा, रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार न जाने, वेद शास्त्र को तरकन लागा, तत योग न पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतर जामी सब के जाने, उसते कहां छुपाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तद काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान निरत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर रीझावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, तर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लै बरबूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, अज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ। बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, टूपी निरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिगसाना रे, आसा महला पंजवा, बंधन काट बसारे औगुण, अपना बिरद सम्हारिया, होए किरपाल माधपित न्याई, बारग ज्यो प्रद पारिया, गुर सिख राखे गुर गोपाल, काढ़ लिये महा पवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जम ते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साहस गराज जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साल संग दुख नाठे, छिजे न जाए इह पौ ना व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंतकाल प्रपय सहाई, एत उतरा कनहारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा, जा तू साहेब ता पौ केहा, हौ तुद बिन के सालाही, एक तू ता सब किश है, मैं तुद बिन दूजा नाही, बाबा बिग देख्या संसार, रख्या करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार, रहाओ। जाने बिरथा सभा मन की, और किस पे आग सुनाइए, विण नावे सजर बौराया, नाम मिले सुख पाइये, क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास, सब कुछ कीता तेरा वर्त, सदा सदा तेरी आस, जे दे वड्याई ता तेरी वड्याई, एत ओत तुझे ते आओ, नानक के प्रसदा सुखदा।

आई जो प्रभु जी मन पानी तू दाना तू सब मेहरबाना ना मिले रंग माणी तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ न जाने मेरा आसा मोहल्ला पंजवा कर कृपा प्रभु अंतर जामी सा संग हर पाईए खोल किवार दिखाले दर्शन पुनरप जन्मन आईए मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरोरे पार ब्रह्म जन दे आराध्या ताके संग तरोरे रहाओ मां उदयान पाग सागर पे हरग सुख में बसना सदगुर पेट पया मन निर्मल जप अमृत हर रसना तन तन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधया गुर प्रसाद पय जन्म।

गुर पूरे के चरण गए, कोड़ जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाव, कहो नानक पुर ब्रह्म पौ खोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु न जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओढ़ प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो सरनाई, मोको देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैनाए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब का होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जन के, हाथ निर्मल दास की जुगता, रहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण को लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परमो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूब गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई,

नरक सुर्ग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम सबल जन्मता का प्रवान। आसा महला पंजवा सोए रही प्रभ खबर न जानी। और पया बौर पछतानी प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी। प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी। रहाओ कर्म अमृत आन निसारे खिसर गयो तूम पर डारे। साध मुहे लादी अंकारे दोष नहीं प्रभ करने हारे। साध संग मिटे परम अंधारे।

ते आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, हरहाओ अनक दुख देवे अवरा कहो, पहुंच न सके जन तेरे कहो, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जे, केवल नाम हृदय मैं दीजे, आसा महला पंजवा, मन तृप्तानु मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद परी बनी, जाके गृह सब किस गए पूर्ण, तो भेटिया

ताका चवर सब ऊपर चूल ले, ताका तूप सदा प्रफुल ले, काट काट संपट भय रे जाका, अपाग सब संघ है सदा, आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत, जिसे प्राप्त इसी लेना, संत चरण ओ आयो शरणा, आचड़े उहर साल।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्ण महादेव मोया, गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बाधा, हमे पचे मनमुख मुँह राखा, गुरु नानक बाँ पकड़ हम राखा, आसा महला पंजवा, सर्व दुख जब सरे स्वामी, ईगा ऊहा कामना प्राणी, संतर्पता से हर घर त्याय, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख पर तुमरी रिजाए, रहाओ संग होवत को जांत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन किसी दिया ते चित्त नाहे, मां बिखिया में दिन रहन जाहे, कौ नानक प्रसिमरो एक, गद पाइगे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया, सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई, रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर, गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वस गद आया, जिस मन वसे हर का नाम, नानक इस ऊपर कुर्बान।

सर्व सुख पावै, आवर काहू पै बौड़ ना जावै, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रमनवासी रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली भांत सब सह समाही, जाकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता, तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता, तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया, तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया, ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको, नानक खसमे बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा, हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु, दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने, साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारिया, जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन, किसको लग गए जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा

निगटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी, जो अपने प्रभावे तिस की सोए सुनी मन हरिया।

नटुआ पे दिखावे बहु विद, जैसा है ओ तै सारे, अनक जोन प्रम्यो प्रांपीतर, सुखे नहीं परवे सारे, साजन संत हमारे मीता, बेन हर हर अनीता रे, सा संग मिल हर गुणगा।

आप ओझ लंगीए सदा हर गुण गाओ, जन्म मरने वारिये दुख ना जंपर होए, नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रसोए, एक टेक आधार एको एक का मन जोर, नानक जपिए मिल सा संगत हर बिन अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभु के दीगे सब रस भोग, दीन बंद बजी दाता सरण राखण जोग, मेरे मन ध्याए हर हर नाओ, हलत पलत सहाय संग एक सिउन लाओ, हरहाओ बेल सस्तर जन ते आवे, तरण को संसार

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने।

मो कुटुंब दिखे रसमत मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोतीन लालन नहे न